0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंट
2: Coffee ready.

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंट से घर रंग लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाने
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंट
2: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेन्स

0: coffee ready.
1: Wow, thank you. You sound like achhi sugandhit banaunchu. Mangaldeep scent 3-in-1 ka saath.
0: I love the scent.
1: I love it too. Hamile man parcha bhane bhagwan lai pani man parcha.
0: Mangaldeep scent 3-in-1. Perfume like fragrance. रंग बहार रंग बहार
2: वर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
3: वर्जर पेंस्टेक हर रंग आउनुहोस् लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि
3: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंस्टेक

स्वाद जस्तै सम्बन्ध गाँस ज्ञान मसला। गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल्स नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंसले घर रंगा उनुहोस्ता लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाउनु होस
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंसले

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जन संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जन पेंस ले घर रंग आउनु होस रा लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाउनु होस
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार हरु पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्जन पेंस

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंट

0: दिव्य नयन आँखा घर क्लिनिक प्राली
1: इस 2083 साल को बड़ा दशैं तथा दीपावली को पावन अवसर में दिव्य नयन आँखा घर को असोज र कार्तिक दुई महीना भरी बम्पर अफर टिकट में 50% छूट चश्मा फ्रेम में 25% छूट र आँखा परीक्षण तथा शल्यक्रिया में 30% छूट
0: नेपाल को तिलगंगा आँखा अस्पताल र अमेरिका को मोराइन आई सेंटर बाट प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव प्राप्त गरी 16 वर्ष को कार्यावधि में 80,000 बड़ी बिरामी को मोती बिंदु को शल्यक्रिया गरिसकेका वरिष्ठ फेको सर्जन तथा कोर्निया कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनिल गुरुङ द्वारा अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी उपचार गरिने जानकारी गराउँदछौ
1: हाम्रा सेवाहरू कोर्निया सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच तथा उपचारका साथै कोर्निया प्रत्यारोपण आँखाको लेजर सर्जरी सम्बन्धी जाँच तथा परामर्श दृष्टि विशेषज्ञ द्वारा बाल बालिकाको चश्मा जाँच तथा भिजन थेरापी जलबिन्दु र आँखाको पर्दा सम्बन्धी जाँच उपचार फेको मेसिन द्वारा बिना सुई मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया र आँखामा मासु पलाएको शल्यक्रिया क्लिनिक समय आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म स्थान न्यू रोड भागवटनी पारी एभरेस्ट बैंक नजिक फोन 577-007 97-623-36-816

0: ইন্ডিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড, পোখারা। ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11।
1: ओहो नासर बे कत्ती छाब डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खानी तोला
2: खाने दीवा नासर बे रूपा कोट ज्योति सुनचांदी दुकान महेंद्र पुलादी तोला
1: ए नई छाबा मारे दुकान पो मोना नई पेशोलाई नी छाबा चूरा रैया औठी हमेला झोका टॉस सिक्री हार तन चने चतो नी जग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुअल तुई दिशानारी बेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मो विशा वा चुवल तुई विशा रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै याव यार मोहै
1: जग मात्र आई रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताई रवा ता क्रिवा जाल जाति क्रिवा छतैरा खैमा दिलन चन्न यामो
1: तोय मिल ती विश्या रूपाकोट ज्योति सुनचांदी दुकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-585-8-15 98-560-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको
4: 93.4 Where's that visiting? Entertaining the nation.

0: বাটসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Extreme energy drink.
1: होम केयर सेवा, होम केयर सेवा।
2: हेलो होम केयर, डाक्टर नर्स केयर गिवर को सेवा आयो घर घर।
1: के हजुर को घर में वृद्ध आमा बुबा, बाजे बजे, दीर्घकालीन रोग बीमारी वा अपाङ्गता भएका परिवार का सदस्य लाई विशेष हेरचाह चाहिन्छ र आफ्नो पेशा व्यवसाय र बाध्यताले परिवारजनलाई पर्याप्त विशेष हेरचाह र समय दिन मिलिरहेको छैन।
2: हाम्रा दक्ष एवं अनुभवी नर्स केयर गिवर र डाक्टरहरूले घरैमा प्रदान गर्ने विविध स्वास्थ्य सेवाले सेवाग्राही र परिवारजनलाई शान्ति र निश्चिन्तता प्रदान गर्दछ।
1: हाम्रा सेवा वृद्ध बुबा आमा को नर्सिंग हेरचाह,
2: अल्पकालीन दीर्घकालीन नर्सिंग हेरचाह,
1: सुत्केरी नवजात शिशु को हेरचाह,
2: क्यान्सर सर्जरी राहतकारी हेरचाह,
1: केयर गिवर हेरचाहकर्ता घरेलु सेवा,
2: डाक्टर ल्याब सेवा,
1: औषधि डेलिभरी सेवा,
2: उपकरण बहाल सेवा, तपाईँको निरन्तर साथ र सेवामा हेलो होम केयर परिवार जस्तै हेरचाहमा। हेलो होम केयर सिमलीढुङ्गा पोखरा निभा गल्ली र बुढी बजार, फोन 061-411-777, मोबाइल 98569927।
3: रंग बहार, रंग बहार।
4: बर्जर संगे उपहार उपहार। बम्पर मा यामाहा रेजियार।
3: बर्जर पेंट ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
4: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
3: घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेंट।

मटी ओटी नारी हूँ तई उसको टाड़ा हो मेरा चाहना है ना बात चाहो जीवन में कहीं कहीं ना चाहता ना चाहते अरु को खुशी को लगी टाड़ा होद अब यह मजल मत मैं सहयोग कर सकता।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने क्षमा।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला साँझको 7 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: বাকসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-06-11
1: হ্যালো কি ছ তির খবর
2: ঠিক ছ ইয়ার সঞ্জয় ছস
1: সঞ্জয় ছু অব ভিসা লাগে পছি তো পার্টি দিনে হলা নি
2: পার্টি তো দিনে হুনথ্যো কিমিল গন বাকি নে ছ ইয়ার
1: मैले त सबै किनमेल गरिसके अब बेडसिट सिरक र दुई चार थान टप्स कुर्ती किन्नु छ
2: मैले पनि किन्नु छ के सँगै किनौँ न
1: तिमी जाने अस्ट्रेलिया म क्यानाडा यार
2: सबै ठाउँको बेडसाइड अनुसारको बेडसिट पाउने ठाउँ छ क्या किनमेल संसार हो त्यही जाम न
1: ए मैले पनि खुब सुनेको छु किनमेल संसारको बारे ब्रान्डेड ब्रान्डेड तन्न पाइन्छ त्यहाँ
3: विदेश लैजान तथा पठाउनका लागि भ्याकुम प्याक गरिन्छ साथै भ्याकुम ब्याग पनि उपलब्ध छ
4: जुनसुकै ब्रान्डका आकर्षक तन्ना सेट सिरानी कुशन सिरक ब्ल्याङ्केट ब्ल्याङ्केट कभर बेड कभर दिवान सेट डोर सेट समर ब्ल्याङ्केट कुशन कभर टावल कुर्ता टप्स पाइने एक मात्र ठाउँ किनमेल संसार गैरापाटन पोखरा प्राइम सहकारीको भवन कुमुदिनी होम्स स्कुलदेखि 50 मिटर पश्चिम मोबाइल 9856031412 9864667887
5: तन्ना आजै फेरि आउनुस्
6: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 10 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4 रेडियो अन्नपूर्ण 93.4।